अब पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

0: माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे।
1: Asta Gill and Bacha. That's what the snowman's wife said when the sun came out. Main pani pani ho gayi.

0: कैया ने हरे हरे हरे उदित नारायण हम तो दिल से हारे
1: हम तो दिल से हारे
0: फ्रॉम द फिल्म जोश
1: हरे हरे हरे
0: ग्रेट सॉन्ग
1: हम तो दिल से हारे
0: स्टैंड बाय फॉर योर क्लासिक बीट द इंट्रो
2: The classic hit of the hour, brought to you by Southall Travel. Thinking of travel? Think Southall Travel. Call 0208-574-8410.
0: Right, before I hand the microphone over to Sanjay Sanj, let's finish off with one last little game. Have a listen to this. Tell me the name of the song. 07925-700-272. Listen again. What do you think?

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

नया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।